0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

आप लोगों ने स्टार ट्यून किया हुआ है रेडियो में FM 88.4 बटाग्राम प्रोग्राम आप सुन रहे हैं चिट चैट। मेरे साथ जी मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जो आप जानते हैं, कोई अजनबी भी नहीं हूँ मैं, आपका जाना पहचाना शख्सियत हूँ मैं, सब मुझे जानते हैं, मुझे क्या कहते हैं, मुझे ताजी कहते हैं बड़े ही प्यार से। आपको प्यार से क्या कहते हैं ये आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना? बताएंगे या नहीं बताएंगे? थोड़ा सा उर्दू का तड़का भी लगाएंगे क्योंकि प्रोग्राम में सिर्फ पश्तो बोलने वाले थोड़ी है, उर्दू भी बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, गुजरी बोलने वाले हैं, है या नहीं है? खैर जी, किसी को अगर इनको नहीं आती कोई बात नहीं, किसी को अगर गुजरी नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, अगर आपको उर्दू आती है ना तो ये बड़ी बात है। आती है या नहीं आती? किस किस को उर्दू आती है? अगर नहीं आती

हाथों में किसके लिए हूँ जनाब, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं सिखाऊंगा उर्दू। मैंने कैसे सीखी है यकीन माने, मैंने कोई क्लास अटेंड नहीं की, मैं कभी पंजाब नहीं गया, इधर बड़ग्राम में होते हुए मैंने सीख ली है। तो आप भी सीख सकते हैं, अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप क्यों नहीं सीख सकते जनाब, आप में और मुझ में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है, है ना, सिर्फ एनवायरनमेंट की जरूरत है, मतलब माहौल होना चाहिए। अगर आपके पास माहौल है तो आप इजीली सीख सकते हैं, और अगर माहौल नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। लेकिन इससे बढ़कर अगर आपका पैशन है, मतलब शौक है, जज्बा है, वलवला है, तो आप एज सून एज पॉसिबल, मतलब जल्द जल्द सीख सकते हैं उर्दू, क्योंकि हमारी कौमी जुबान है, हमें सीखनी चाहिए। जुबान है या जबान है, क्या कहते हैं लोग, साड़ियाँ क्या कहते हैं, सियाड़े क्या कहते हैं, इनफेक्ट क्या कहते हैं वो। एनीवे जनाब, उर्दू के साथ साथ पश्तो का तड़का टीवी प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। बिल्कुल जी, दबम द प्रोग्राम पर खैरी कोलंबिया खल का कमजी प्रोग्राम तरह इंटर शिवी दी रा दाखिल शिवी दी आगे तो बाबाई वेलकम खुश अमदे दे जाइनो पर खैर राले अब आगे खल का कमजी प्रोग्राम ने दा महल बाहर तरह वान दी नूर इलाकों तो नूर है वादुनों था आगे तो बाबाई बाय बाय टाटा पमखा मुखा पमखा मुगलुना अब दा दुआ सरा अपल मंजिल मकसूद खैर फैसला का तासुर से वापस अपलो कोरोनो तड़े की मंगले ची दिया गराशे चले तासु दा महल ड्राइविंग कवे औजमा आवाज हो रही तासु तब हम ड्राइविंग बिल्कुल एहतियात से रखवे जगह सासु जिंदगी सर सरा बनो और खलको जिंदगी जिदा दा हम रिजत अहमियत ले रही वाई ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है, अफसोस से एहतियात बेहतर है। सो बेटर इज दैट दस पूरे पूरे एहतियात हो गए जान दबा रहे सही आगा खल का कम चिता सरमी ने मोहब्बत ले रही तासु चाहता सुर को दूर है चारों खाना मुस्तकबिल है अगे दफा रख पल जो डी इज्जत ख्याल से आते हैं जगह जनाब जो चीती दान मोल दे योजल मिलावेगी बिया बिया तो जो नशे मिलावे दिले सौ दे पूरा पूरा ख्याल सातल आकाश सासू जिम्मेवारी जुड़ेगी। बाय द वे जनाब उन्हें चाह बर्थडे भी जन्मदिन भी अगे दे दगे जन्मदिन डेरा डेरा मुबारक शाह हैप्पी बर्थडे टू यू मेनी मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000 साल ऑलवेज लिमो दगा दुआ दा दगा उरा ससो पर जुन की ब्याह ब्याराशी अता सो कतरी कसरा दिल सेलिब्रेट के खैर दिन ने चा बर्थडे नी भी कुछ ना बगे था वायु चा चा जी बर्थडे जी ने तो पार दा की कुनो इंतजाम अरे तो पार दा सेलिब्रेशन इंतजाम लाजिम नु के कना तेरे को कल की तरह ये और बर्थडे भी चेक वाला तो सुहा हो आखो देखो आ गए मजा होना कहीं कहना मरा एनीवे या तबीयत लक्षण ना साजा दे मतलब ना रोगा दे अगर तो बवायू गेट विल सोन जर तो जर टू शेक ना जनाब जगह चिकल तो सु बीमार है नुखिस बिल्कुल ना खारे कना अब कल इंसान है बीमार है भी कम कारण कबूल गाड़ी अखबल जान दबारा अखबल इलाके दबारा अखबल मशरानों दबारा नौ कारण खबरें गिरे इंसान खुराक तक हम जड़न की गई खबरों तक हम जड़न की गई सो जना दस बार मुंगा हर वक्त हर साथ आदो आगो यू चिता सो रोज सेहत हमें लाओ शीज करो सेहत लो इन्हें मत है।

0: पता नहीं लगी हाँ मैंने लगा लहसुन दासी अभी रखा था कि भले मैसेज आकर दे दीजिए ना ताज भाई अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग संगई व्यक्ति सिंह दी अभी गुड टाकी मैम और ताज भाई तो सपट पड़ रहा है और आजमा वाला सरत सलाम और खास सलाम सारत आया मालिश मालिश बड़ी रहते तो मैंने ना खैर के लगा दासी जरा रखा था कि कम करना बाय द वे कॉल अखल गुरु बुलाए मैंने सुख दियो कम से दिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब सुख दकम से ना
1: हम इस्लामाबाद से अपने मामू के घर आए हैं।
0: अच्छा जी आप इस्लामाबाद से अपने मामू के घर आए हैं अपना नाम बताइएगा मुझे अपने नाम बताइए मुझे
1: नाम है मेरा
0: कौन सा नाम क्या नाम है उजैर
1: हिजर
0: हिजर
1: हाँ।
0: अच्छा जी हिजर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो
1: मैं टू में पढ़ता हूँ
0: कौन सी क्लास में
1: टू में
0: टू क्लास में मतलब सेकंड क्लास में पढ़ते हो
1: हाँ।
0: अच्छा जी आप पंजाब से आए हो
1: हाँ।
0: आपको पश्तो नहीं आती
1: हाँ।
0: क्यों नहीं आती पश्तो सीख लेना ये तो बहुत अच्छी जुबान है बहुत मीठी जुबान है
1: आती है थोड़ी थोड़ी
0: थोड़ी थोड़ी थोड़ी आती है ज्यादा क्यों नहीं आती है मुझे तो उर्दू नहीं आती मुझे तो पश्तो आती है बिल्कुल ठीक ठाक है माता राजी करना अलग अल्फाज जगड़ी दी पुख्तो के
1: ना
0: दोबारा सर प्रोग्राम किसी शरीक के हैजर सबर असर शरीक के प्रोग्राम के खुशहाल हर तरह से ओके बाय अल्लाह हाफिज बिल्कुल जी सर हिजर के कॉल को डरे बिल्कुल जी ना बल में से जाकर

द पेशावर डिमांड डिस्ट्रीब्यूटर जवाद खान सरा तासो पदे नंबर राबिता कवलिशे व्हाट्सएप नंबर दे 0308-941-5893 मोबाइल नंबर दे 0321-592-1911 पेशावर टी पहर प्याले की खुन खुशबू और मायार।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
3: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: Radio Ama Network, News and Information Station.
1: Radio Ama Network.
2: Pegham aman hai.
3: Pyar ki ek duniya lekar.
4: Mohabbat samet kar.
5: Radio Ama aaya aapki zindagi mein.
4: To sunte rahiye. रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क
5: रेडियो अमन नेटवर्क अमन अमन
6: शुक्रिया आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
7: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।